किसी का निखटुनिया पैसा लाए ना, लाले को ये डर पैसा कोई खाए ना, अरे बुढ़े को फिकर बुढ़ी भाग जाए ना। रखनी जिगर है डर है फिकर है सब गड़बड़ है, निकले है दम खोते आला की कसम।

कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, अररम तररम दुनिया के कैसे कैसे हम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

बताओ देंगे तो देख जाए दिल, मंदिर का ताज है, मिलने की याद है, तू क्यों दास है।

तेरे मंजिल की, वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का पास है, मिलने की बात है, तू क्यों उदास है।

मीठी प्यारी सगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ू मैं छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ू मैं छुपाए तो कहाँ पता थी।

जब जब तक है तेरी भरी तेरे पहलू में नीलम परी, जब जिस दिन भी खाली हुई जान रह जाए।

चल मेरे दिल चले हम वहाँ, उन पैसे का लफड़ा जहाँ, ये तो दुनिया है व्यापार।

0: आए वृंदावनवासी मंगल मनाए, फूलों के संग संग आंसू चढ़ाए, फूलों के संग संग आंसू चढ़ाए। सीता के मन में राम का ध्यान,
1: राम के मन में सीता का ध्यान,
2: प्राणों की आरती, प्राणों की आरती जलाई है जलाई।

तुम आज पिछित हो जाओ ने मुझमान माँ अब न सताओ रे आओ रे आओ रे आओ आओ रे मुझमान माँ अब न सताओ

मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था ए घटा परस जा।

मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा घाट ते घटा हाँ बरस जा ते पवन ओ झूम जा।